0: तुम कुफा भी
1: राननवा नी लनुनना चुचुचा तवमनी त्वेरना जय फाचेरु वनरो मायर फुचिका तवमोजोले जाया दिया नपियत्सपुन जावटा निस्तावा अरमरमारवा नी पितुलो फंजकाना तिवा रानाईता नरिवा लाचकन रनमासुन दिजोन जावटा तेनेन को यू रनमासुन लाचकिवा न्यामनुकना दिजोन तेनेन को लाचकन रनमासुआ सचिया ohatrany ny ainana ny zavatra ny ainana ny vahoaka malagasy tamin'izany a ny tsindry azo lena ny fanjanahantany a ny famoretana mahery vaika ny

0: तुम कुफा भी
1: आई पिरेने नॉन रेसान अलोम बाउला फांतरफा ना विताज ना विताबे आर्ट्स नंगाल जा ना वाफ्ट वेंटियाज ताऊनी किताब मुबुला पंजाकान आरी चिन्वार तो तंद्राज जा ना कमनी तन कोलो नुसासनी ममेर नं तन कोलो वन कोलो मकान तन मलगाश अमी दम कोलो वही सिक्ती जा मंगाता कनी इल्जे पार्स चिश ना नंपिया तम जान फ्टों जान ना इर्रायाज ना सिंडिकायु ना पार्टी पॉलिटिकियु ना उल्सुर जो वो बोबीजम तेनुए हाँ अंगताना तकी ना इल्जे पार्स ऐफा स्टारलोर कनीफा ऐला बेजाइ चिना येनो चिना रिया आनाक्रेय बंतेनुए अंदों पिन रचिरक नंगाता जाइए ओसे अंडिया जोन दोपे démilitarisé, dénucléarisé. Si je n'en ai pas besoin, je n'en ai pas besoin. Car, je n'ai pas besoin de tout, je n'ai pas besoin de tout, je n'ai pas besoin de tout, SFF, CEG, 1250, SFF, 11 000, 1250, CEG, lycée, 113, CEG, université, Isaac Nfartan, École nationale d'informatique, Anfenarantsu, École normale niveau 3, Etu, Inskaye, Etu, École nationale de la marine marchande, Anmazang, Sekren, Zanrit Zantopku, Azadir, Muramanadin, Munvokafa, Gamba, Amzo, Katkun Fifdiananzo, Zalo de Miad Mich, Batsiish, Fifdiananu, Zo, Zati Tira Douza, Wan Fireninu, Rats in Tenya, dia, autrement, non-assistance à pays en danger. Mangata Kamisi, Mtalao, Ampano politique ret, Titan Razana ret, Beseka, Niftova Pedina, Mande, Reni Ampisha in Dalrin, Andot Sikia, Ano, Nifa, Ampiavan, Ampirenena, Natsanga, Nan CFN, Malazo Kurunia, Sinan, Notan Luvian Sao Niju, Jerepus, Notan Punda Maitavatu. Inonoto, andanina voulait nous faire, c'est que j'ai fait vite. Il ne faut pas de mettre en place et on attend la lampe en rennen. Il ne faut pas de mettre en place et on attend tout le monde, raoult à la champion. C'est nous là, tout le monde, tout le monde, arrivé au Malagasy, fa rachita caro, nous sommes tous les yara yasa, en avant de Ferenenti, quand tu vaïni, ni baïk en Ferenenti, fa de Madagascar, Smandualka, Madagascar, Smalagasy, Nchak.
0: Shota tumbuku la, shota tumbuku vavi.
2: Attachez vos ceintures.